अपार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रत्याय नानक तिन कुर्बान, श्री राग मोहल्ला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिख लाए। मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखे आपाए, गुण गोविंद नित गावने निर्मल साचे नाए। मेरे मन गुर सब

संग सुमाओ हर जपिए आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग मोहल्ला पंजवा प्रीत लगी तेज सच सिंह मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत

संता संगत मानस प्रीतम भग सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन इस

आ निर्मल इस दिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली हुई आन मिलावे माए, चारे कुंडा पालिया सहबन अवर ना जाए, इस आगे अरदास कर जो मिले करतार, तल गुरदाता नाम का पूरा जिस भंडार।

या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौने उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी परमतया दुलाभ जन्म पायो ए नारक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवा तित्तर वसे सोहेलड़ी।

पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार सत संतोख दया कमावे एक करणी सार आव छोड़ सब होए एना जे दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दुकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना धूते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना रखाओ मान अवमान मंदे सो सेवक नाही तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदागी कैन कहामन यो कीर्त करला कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख को ई विरला गात अवगत कछ नदर न आया संतन की रेण नानक दान पाया।

पाए, गुर राखे से उबरे हाथे स्यों निमलाए। हर जीव सबत पछाणीए साजर ते गुरवाक, तेत तन मैल न लग गई सच कर जिस ओ ताक। नदर करे सच पाईए बिन ना वेख्या साक, जिन्नी सच पछाणिया छे सुगिए जू चार। होमे तिस ना मार के सच रखिया उर तार, जग में लहा एक नाम पाई गए गुर विचार। सचो वखर लदिए लाभ सदा सच रास, साची दर गए बैसई।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रवसा दीप अनूप जोत तिर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पय पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख समकर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधक नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुख मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भक्ति पाए विगुणिया मोकाला पद कोय, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोय, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप शाने कर।

वारो वार सब सल आए आपको वडो वडेरी होए। गुरबिन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सीगारिए, जो बनबाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी। बिन पिर बा सीगार दू कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूढ़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सजाणीए पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए। हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार। इकत तागे राह मिले काल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे, खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल ना तोलिए कस न पाया जाए, वा पारी बन जा रहा आए वजो लखाए। तार कुमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कसने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है

साचो साहिब सेवी है, गुरमुख अकथो कात, आवे जाए पवाई है, पय किरत कमाए, पूर्व लिखिया क्यों मेटी है, लिखिया लेख रजाए, बिन घर ना

रय बक्से पवित पंडार अरहाओ रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अलको तो सोकनो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अव पीर रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थल हरियावले एक बूंद न पवी के कर्म मिले सो पाईए किरत पया सिर देह अरे मन ऐसी घर सो प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटन आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वडियाई दे अरे मन ऐसी घर सो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमु सोजी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणामणी तरता करे सो होए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा रहो न टुटे जे सरगुर पेटे सोए ज्ञान पदार्थ पाईए तेर पवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का घाक होए खेल गए से पंखणु जो चुग दे सर तल कड़ी के मोद के चलना खेल अज के कल जे तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजे पौमे मैल न जाए सो हंग आ पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आ पछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पतियाए मनमुख सोजी ना पवे विछड़ चोटा काए नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख फुले फुलाईए भूली ठौर न काए गुरबिन को न दिखावई अंधी आवे जाए ज्ञान पदार्थ कोया।

सिद्ध बह देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुंजन शेख पीर सलार दार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करण गार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनू आखिए जिस सिस न होवी लेख असमार तरपी चल।

माया मोह चुकाया, गुरमति सहत सुपहाय। फिर सब दे जग दुखिया फिर मन मुखा नू गीखा है, सब दे नाम ते आई है, सब दे सच सुमाए। माया पूले सिद्ध फिर समाध ना लगे सुपहाए, तीने लो व्याप्त है हल कर ही लपटाए। बिन गुरमुक्त ना पाईए ना दुबदा माया जाए, माया किसनु आखिए क्या माया कर्म कमाए। तो सुख ए जो बद है हमें कर्म कमाए, बिन सबदे परम ना चूकई ना विचों हमें जाए। बिन प्रीति भगत ना होवई, बिन सबदे थाए ना पाए। सबदे हमें मारिए माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सहज सुपाए। बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन मसया सहज मिलया प्रसोए, नानक सबदे हरसा लाईए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना, अपे परम पुलाए। मनम कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसे मन आए।

परम खुलाए पढ़िए कुणिए क्या कथिए क्या मुंडो कुत्था जाए। चौथे पद में सहज है पुरमुख पल्ले पाए निर्गुण नाम निधान है फैजे सोजी होए। गुणवंती सालाया सच्चे सच्ची सोए उलिया सहज मिलाए सी शब्द मिलावा होए। किन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार सहजे की सोजी पई सच्चे शब्द पार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार सहजे अदिष्ट पछाणिए निर्भव ज्योत निरंकार। हवना जिया का एक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार पूरे शब्द सराई है जिसदा अंत न पारावार। ज्ञानिया का तन नाम है सहज करे व्यापार अन्दन लाहर नाम लैन अखुट परे भंडार। नानक तोट न आवई तीए ते मनहार श्री राग महला तीजा सदगुर मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए। पूरे शब्द सब सोजी होई हर नामे रहे सुमाए मन मेरे सदगुर से चित लाए। निर्मल नाम सद नव तनो आप वसे मन आए। अरहाओ हर जू रखो अपनी सरनाई क्यों रखे त्यों रहना। कुर के शब्द जीवित मरे गुरमुख पवजल तरना वडे भाग नाव पाईए गुरमत शब्द सुहाई। आपे मन मसिया प्रव करता तैजे रहा सुमाई एक ना मनमुख शब्द ना पावे बंधन बंद पवाया। लख चौरासी फिर फिर आवे बिरता जन्म गवाया भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते। अनदिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम सुवाते गुरमुख अमृत बाणी बोले सब।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागनी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तब तक की कर्म कमाए जियो हो सतगुर विटो कुमाया जेन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया इन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तो करमस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाण पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे न तत्ती वाओ जियो मैं मंत्र प्रभु ते आया जिये इछेड़ा फल पाया सा पासा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जि भावे से बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया।

शांत प्रेम ठगोरी पाए रिहाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दो सब जोया भगत लखेण तरवस पए मन सरसुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए थकी मंगलो गाया यश पुजाया बौड़ न माया होया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोया डकना साई नाम अमोल कीम न कोई जान दो जिन्ना पागम थागे से नानक हरंग मान दो।

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हो बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मानमुख नाम विहूणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल दूजे लगे पचमुए

भगती रंग न उतरे सहजे रहे सुमाए पौड़ी सिष्ट उपाई सब तुद आपेरजिक संभाया एक वल छल करके खाम दे मोह कूड़ कुसत तिनी ढाया तुद आपे पावे सो करे तुद ओते कम ओए लाया एक ना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तड़ाया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद वखाण है माया मोह सुवाए दूजे पाए हा नाम सारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता इस कबहू ना चेतै जो दिंदा रिजक समाहे जम का फहा गलो ना कटिए फिर आवे जाए मानमुख किशु ना सूझे अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुखदाता नाम से मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विखाए नानक सो नाओ मनो नाम सारी है जित दर सच्चे सोभा पाए महला तीजा सतगुर से सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमती आ पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चे शब्द सालाना सुखे सुख निवास जब तब संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमती नाओ पाईए मनमुख मोहे विनास ज्यों पावे त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास तब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे ते सब कुछ मिले एक ना दूर है पास सब बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगिए मन वेखो को निरजास सब तुदे नू सालां दे दर गुरमुखा नू परगास। सलोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोहे प्यार अंतर ब्रह्म न चीनई मन मूर्ख का वार दूजे पाए जगत प्रबोध दा ना बूझे विचार बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेवया तिनी नाओ पाया बूझो कर विचार सदा सांत सुख मन वसै चूके कूक पुकार आपे नू आप खाए मन निर्मल होवे गुर सबदी विचार नानक सबदरते से मुक्त है हर जियो हेत प्यार पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे ताए जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम त्याए गुर सबदी हर पाईए हर पार लंघाए मन हठ किने ना पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लए हर लाए। सलोक महला तीजा नानक सो सूरावरी आम जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया आप हुआ सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोन सच द्वार नाम प्यारिया मनमुख मरे अहंकार मरण मगाड़िया सबो वरते हुक्म क्या करे विचारिया आपो दूजे लग खसम वसारिया नानक बिन नावे सब दुख सुख वसारिया। महला तीजा गुरपूरे हर नाम दिड़ाया तिन विचो परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाई कर चानन माग दिखाया होमे मार एक लिव लागी अंतर नाम साया गुरमती जम जोए न साकै साचे नाम समाया।

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध कटत है, मोर मोर कर अटक लागत तार, पेगत ही जामरा हसे, ऐसा तय जग परमलाया, कैसे बूझे जा मोया गए माया रखाओ, कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी, अंत जीवन बाणी, एन वेद पवसागर तरना, जत पावे तां लागे पाओ, परम पुलाव चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब सर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तमराओ, तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन ना जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सब के जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नाल गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश एक पाया, जमे तार चोया त निर्मल, रसमय रसन चोआया, ए जो बाद अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग रत, और दुनि सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै, अंध अग्ञानी कदे ना सीझै। इस जुग मह राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप करै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म तर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना को।

आए, पुत कुटुंब गृह मोहया माए, मनमुख अंधा आवे जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अन दिन भगत गुर सबदी होए, गुरमत

किरसानी किरसान करे, लोचे जी उलाए, हल जोते उदम करे, मेरा पुत ती खाए, त्यों हर जन हर हर जप करे, हर अंत छिड़ाए, मैं मूर्ख की गद कीजे मेरे राम, गुर सदगुर सेवा हर लाए, हम काम रहाओ, ले तुरे सौदागरी सौदागर तावे, तान खटे आसा करे, माया मोह वधावे, त्यों हर जन हर हर बोलता, हर बोल सुख पावे, फिर संचे हटवाणिया बेहाड कुमाए, वो चूड़ पसारा चूठ का झूठे लपटाए, त्यों हर जान हर तन संचया,

उबदे दियो हर नाम छिड़ावे तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुरु बोले ता विस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अबर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए छिड़ाए तू गुरु पिता तू है गुरु माता तू गुरु बंधप मेरा सगा सगाए जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम घर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता।

किस रूप नहीं, किस जात नहीं, किस टंग ना मेरा, क्या मुंह ले बोले गुण बिहून, नंद पिया ना तेरा, हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, तस अन्न भुगानी, जिन दिए सो चित न आवी, पशु हो कर जानी, सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हाट विहाजया, हार गुलम गुलामी, गौड़ी बैरागण महला चौथा, जो जननी सो जन पालती, राखे नदर मजहार, अंतर बार मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, तू सदगुर गुरसिख राखता, हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं आने, तन तन गुरु गुर सदगुर पांदा, जिन हर उपदेह दे किए।

तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो घर दस दिखाओ मेरे मन तन लोच कन्हेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन घर केरी गुर किरपाल किरपा किंचित गुर कीनी हर मिलिया अयपा मेरी हरहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदिन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गुर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया अयपा मेरी अनदिन अंध पया बड़भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया के।

दैद चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया हो दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन पूरे गांडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है तो मन गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यो हार आखे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो क्या नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडा है पर साधु अंजलि पुन वड्डा है कड नौत पुन वड्डा है रहाओ सागत हारा साधना जानिया इन अंतर होम में कंडा है ज्यो ज्यो चले चुबे दुख पाव है जमकाल सहे सिर डंडा है हर जन घर घर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुत शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रातेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है।

और अग्मे को तिर पार ब्रह्म है मेरे सदगुरु लाग बसीठा जिन गुर बजन सुगा ने ही अरे तिन आगे आन परीठा मानमुख हीरा अत कठोर है तिन अंतरकार करीठा बिशीर कौबो दूध पियाये बिघ निगसे फोल फुलीठा हर प्रभ आन मिलावो गुर साधु कास गरड़ सदमुख लीठा या नान गुर के लाले गोले लाग

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सब गुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखण को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमतरा मरसायण जेवा हर गुण गावे। मन रसक रसक रस आघाने फिर बोर न पूख लगावे। कोई करे उपाप अनेक भो तेरे फिर कृपा नाम न पावे। जन नानक हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दिरड़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम करामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा। वड़भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गोर हा रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड़भागी मिल सूड सुजानी जियो। मेरा मन तनहा रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा। वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा। आओ सभी गुण कामन करी हा जियो। मिल संत जना रंगमाने रलिया जियो। पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो। हर तुठे टोल टोल मिलिए जियो। मेरे मंत्र प्रेम लगा हर टोले जियो। मैं मेले मित्र

की लीला माना सोहेला परपंच हीला हर कृपा संतन सतया सर्व सुख इव आनंद लया सा संग हर कीर्तन गाई है कौ नानक वडभागी पाई है जाके हर तन सोई सोहेला प्रभु कृपा ते सत्संग मेला हरहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा प्राणी जाने इव तन मेरा बहोर बहोर उहाउ लपटेरा पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा हो न पाए गे राम के दासा कवन सो बिद जित राम गुण गाए कवन सो मत जित तरे ए माए रहाओ जो भलाई सो बुरा जाने साज कह सो बिखे सुमाने जाने नाही जीत अरहार यो लेवा सागर संसार जो हल हल सो पी वे बौरा अमृत नाम जाने कर कौरा सा संके नाही नेर लख चौरासी पंता फेर एके जाल फाए पंखी रस रो करे बोरंगी कहो नानक जे पय कृपाल गुर पूरे ताके काटे जाल गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा कहो कृपा ते मार्ग पाई है प्रभु कृपा ते नाम ते आई है प्रभु कृपा ते बंधन छुटे ओ कृपा ते हो में टुटे तुम लावो तो लागे सेव हम ते कछु ना होवे देव हरहाओ तू पावे ता गावा बाणी तू पावे ता सच बखाणी तू पावे ता सतगुर मया फिर सुखा पर तेरी दया जो तो पावे सो निर्मल करमा जो तो पावे सो सतर्मा सरमन दान गुण तुम ही पास तू साहेब सेव अरदास मन तन निर्मल होए हर रंग।

मिटे कलेश सुखी हो रही है। ऐसा दाता सुखगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रहाओ जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

योग हर के मार्ग पद पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करणहार सद वसे हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी मोहल्ला पंजवा संत की तूर मिटे अकोट संत प्रसाद जनमन ते छोट संत का दर्श पूर्ण इसनान संत कृपा ते जपिए नाम रखाओ संत के संग मिटिया अहंकार दिट आवे सब एक अंकार संसो प्रसन्न आए बस पंच

पैस हुए जन्म जन्म के बिशरे मिले रहाव सिमरत सिमरत प्रभु का नाव हगर का बिनसा था सहस पै बोले हर बाणी आड़ पैर पर सिमरु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ न आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी मोहल्ला पिनवा पले दिनस पले संयोग जित भेटे पार ब्रह्म निरजोग ओ बेला कहो बल जाओ जित मेरा मन जपे हर नाओ रहाओ सफल मुहूर्त सबल ओ करी जित रसना उतरे हर हरी सबल ओ माता संत नमस्कार चरण पुनीत चले हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण गौड़ी मोहल्ला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन भगवंत नाही अनकोए मारे राखे एको सोए रहाओ गुर के चरण हृदय उरतार अग्न सागर जा उतरे पार गुरमूर स्यों लाए ध्यान ईहा ऊहा पावे मान सगल त्या गुर सरणी आया मिटे अंधेसे नानक सो पाया गौड़ी मोहल्ला पंजवा जिस सिमरत दूग सब जाए नाम रतन वस्ते मन आए जामन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन वखाणी रखाओ इस बिना ही दूजा कोए जा की दृष्टि।

की पाई, सोग सहज सांत आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, नाम रास सासंग खाटी, कहो नानक प्रभ अवधा काटी, गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत सा मिटे कलेस, चरण कम मन में परवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रह पीओ प्यारी रखाओ, सोग सहज रसमहा आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए, साध के संग किलब सब थोए, हर कृपा प्रभु दीन दयाला, नानक दीजे सादर वाला, गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, इस आस क्यों बने माए, खमसार आन कम लागे, हौडी बदले रतन त्याग गए रखाओ, प्रभु त्याग लागत अन लोभा, दास सलाम करत का शोभा,

मनमय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोड़ जन्म की मन ले जाई रहाओ हर की कथा हृदय बसाई

सोपाय मया करी पूर्ण हराया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग, हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ, गर्द वांगू लागे पेठ। बिनकर तूती मुक्त न पाई है, मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इसनाना, चूरी कढ़ लेवे हसदाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी, जिया कोत न संगे प्राणी।

शरण परे प्रभ अंतरजामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर सिंह राते पाए ना जले, हर सिंह राते माया नहीं चले, हर सिंह राते नहीं डूबे जला, हर सिंह राते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय, केट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

साई मीतला तू संग हमारे बाह जियो रहाओ, खुद बिन करी ना जीवना त्रग रहना संसार, जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी, हस आलम्बन देव प्राभ घर तो उदर गोपाल, मोय निर्गुण मथोरिया तू सदगी दीन दयाल, क्या सुख तेरे समला हवन विधि विचार, शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महार समाहे, तो प्रसन्न पै केसवा से दिन हर गुण गाहे, माल पिता सुध बंद को तू मेरे प्राण आधार, सा संग नानक भजे हितरिया संसार, गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावे, सर्व कल्याण सुख सुध पावे, हरहाओ बन मन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी, जिन घर पाया से वडभागी, ब्रह्मादक सनकादक चाहे, जोगी जति सिद्ध अर आहे, जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे, ताकि सरंजन बिसर तनाही, वडभागी हर संत मिलाही, जन मरण

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी है जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

सगल बिसारी, करमस्त गुर पूरे करयो, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए रहे रिद अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मुके, आचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाहे पर्दा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पराई, कहो न जाई यो अचंपो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पै बिगासा, गुर निधान हृदय लै राखिया, गौड़ी माला मोहल्ला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्ब लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ, शास्त्र सिमरत वेद विचारे, महापुरखन यों कहया, बिन घर भजन नहीं निस्त।

दियो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार, गौड़ी माज मखला पंजवां, हर राम राम राम रामा जब

आदो यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर न रहाई, रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई, रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछना बसाई, जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तौ सबिद बन आई, गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काए गवाव और हाओ, पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ, गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो, ताज अब महान।

महा संकट बाण तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो निहो न लावे। नानक मुक्त ताहे तुम मानो जे कड़ राम सुमावे। गौड़ी महल्ला नावा साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को।

निस्त निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिगुटी छूटी बिम मजहार, गुर की मत जिए आई कार, इन बिग राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया, रखाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पै सूहा रंग माया, नदर पई बिग ठाक रखाया, उल्ट पई जीवित मर जागया, सद रवे मन हर स्यों लागया, हरा संग्रह बिग पर हर त्यागया, पाए बसे जमका पो पागया, साध रहे बादंग अंकारा, चित हर स्यों राता हुकुम अपारा, जा

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त इकनाई, तही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुखाए, गुरमति नाम हृदय।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भो नाटा, ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बहुत पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार

माखन नहीं रीसै। इस पर जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीन आप कहो सो अपर अपारा। तब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म सुमाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आप हो जाओ। मानमुख सूतक कभे न जाए, जितिर शब्द न भीजे हर कहे नाए। रहाओ सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाय, मरे न जन्मे काल न खाए। शास्त सिमरत सो देखो कोय, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जू राखो हृदय उरतारा। गुरमुख सोभा साज दुआरा, पंडित हर पढ़ तजो विकारा। गुरमुख भौजल उतरो पारा रहाओ, गुरमुख विचो होमे जाए। गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम से मन आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई। लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई। मनमुख डंप बहु चतराई, जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई। आवे जावे ठौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना। बागजो लाए भये नित्याना, जा पकड़िया तब ही पछताना। बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई। गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पद नामे वड्याई। सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नावे झूठी चतराई। गौड़ी महला तीजा, हे जो का धर्म पढ़ो तुम पाई। पूरे गुरसब सोजी पाई, ऐथ अगे हर नाम सिखाई। आराम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध न पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। गुर के शब्द सच ले लाए, हौ में मैला एओ संसारा। नित तीर्थ नावे न जाए अंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुवारा। सोजन साचा दे हो में मारे, गुर के शब्द पंच संघारे। आप तरे सगले कुल तारे, माया मोए नट बाजी पाई। मानमुख अंदर है लबटाई, गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर से न फिरे अंकारी। आप न चीने बाजी गारी, कापड़ पैर करे चतराई। माया मोए अध परम फुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, गृह अंतर साच लिवलागी। नानक सतगुर सेवा से वड़भागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा। तेते उपजे दे मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा। हम घर राखे सतगुरु मिलाया, अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवदल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे। जम का गल जेवड़ा नितकाल संतावे, गुरमुख जम काल ने

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह है, सो सजम मेरा मन चाह है, हर की प्रीत सदा संग चाल है, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल है, रहाओ बिन सतनाही छो

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड़ लगे पचमोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

मोहन तो सत संग आवे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ न आवे तुद जपे निदाना जम काल तिन को लगे नाही जो एक मन त्याग है मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पाव है मल मूत मूल जे मुक्त होते से देख दर्श सुगयाना बिन वंतनान कराज निचल पूर्ण पुरख भगवाना मोहन तू सुबल फलिया सन परवार मोहन पुत्र मीत भाई कुटम सब तारे तारिया जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनु तन कहया तेन जम नेड़ न आया बेंत गुण तेरे कथे ना जाही सदगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लगत रिया संसारे गौड़ी मोहल्ला पंजवा सलोक पतत असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाप को तिन किलबख दानहार शंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कम आराधिय जां पंत बिखड़ा अग्न सागर निमख सिमरत साधिय कल मले दहता सुध करता बिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पये पंजन घर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया भगत वच्छल पुरख पूरन मने चिंदया पाईए तम अंध कूब ते उधारे नाम मन मसाईए सुर सिद्ध गण गंधर्व मुनजन गुण अंग भगती गाया बिनवंत नारंग करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जनतारी करुणामय समर्थ स्वामी घट घट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारो शरण जोग समर्थ मोहन सर्व दुख बेदारो रोग सोग तब दुख बिनसह जगत ना मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल तारी गुण गाओ मना अच्युत अविनाशी सब ते ऊज दयाला बेसम पर देवन कौ एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया थारे सब किसे काल कंटक लोभ नस जी जाके प्रभस तो प्रसन्न देवा सबल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक किश पुन्नी जगत दीन दयाला गौड़ी मोहल्ला पंजवा सुन सखिए मिल उदम करेगा मनाए लय हर कंत मान त्याकर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत सखी बस आया फिर छोड़ न जाई हे रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पय नरक निवार उनीत करेथ जंत सुन सखिए ए परी बेनंती यो मतांत पकाइए सह सुपाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइए कल क्लेश मिटे भ्रम नस मन चिंदिया फल पाईए पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आईए सगी इश करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सबाए खोज लो हर संत जना संग समृद्ध पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड़ भागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मर तन हर संग हिलिया सुन सवीए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया परम खोयो सांत सह स्वामी प्रगास पया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सुहाग ना टलिया एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बामन अखरी मोहल्ला पंजवा सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरोधरा
ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤ ਸਤਿਬੁੱਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਅਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਾ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਜੋ ਜੁਗ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਹਰ ਜਪ ਉਧਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗਤਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਨਮ।

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखियो अकारा एक सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण त्रिटारं सगल पाद कर करे उपायो जन्म मरण मनमोह बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन खां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहू ने नानका होत जा सब धूर पवड़ी तदा

तर पत ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कैत सुंत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सबताक ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पल ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिड़ाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे कुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिटे नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन फासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रभे आप बस अपन हो करे नानक बिन हर खां कमात पौड़ी एक है आप करा मनहारा आप है पाप उन विस्तारा या जुग जित जित आप है लायो सो सो पायो जो

के मोहे न बुझे हो प्रभ सदगु संग लेख गणत न छूटी है काची पीत न शुद्ध जिसे बुझाए नानका ए गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कहे न को आओ बैठ आदर सुभ देव वा मेल नहीं पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्त कर्म लिखियो तुर जाके हर संपे नानक करता के सलोक लालच चूड़ बेकार मोह व्याप्त मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बेखे रसराते अंग बुद्ध माया मदमाते या माया में जन्मे मरना ज्यो जो हुक्म तेरे त्यो करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गहर गंभीर अथाह दूसरा ही अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एक आप अवर न हो वहार हो सद आया ओवा का अंत न काहू पाया पीठ हस्त में पूर समाने पलट पुरुष ठाऊ जाने जाको दीनो हर से अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना श्लोक आत्म रस है जानिया हरंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सबल ताऊ को गनिये जास रसन हर घर जस पनिये आए बसे साधु के संग अनदन नाम ते आवे रंग आवत सोजन नाम मे राता जाको दया मया विधाता एक आमन फिर जो न आया नानक हर के दर्श सुमाया श्लोक या जत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे

एक नाम ले मने परू यैया जन्मन हारिये पुर पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुर पूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ये बिखया दिन चार छे छाड़ चले हो सब कोए ताको मात पिता सो थिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया, गुरमुख जे कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया। नरक नाहे सा संग पौड़ी, नन्ना नरक परे ते नाही, जाके मन तन नाम साही। नाम निधान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना उए खपते। नन्ना कार न होता ताको, नाम अंतर गुर दीनो जाको। निध निधान हर अमृत पूरे, ते बाजे नानक अनघ तूरे। स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म, तज पर

पौड़ी अड़ाड़ा डाड़ मिटे संग साधु कर्म धर्म तत नाम अराधु रूड़ो जे बस्यो रे दिमागी हुआ की डाड़ मिटत दिन साही अड़ाड़ करत सागत गावारा जे ही ये अंगबुद्ध विकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई निमुख माए नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट कहो उगत सियान पत्याग गुर दीख्या दे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरन परे अवहारे शास्त्र सिमरत वेद बुकारे सोधत सोधत सोध विचारा बिन हर भजन।

दृष्टि आया उस्तद करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मन मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय सुमाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुक्म न प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक न जाई सोउ सोउ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे सलोक हर हर मुखते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मै रव रहया शांत अनंतर सोए पौड़ी फेरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान होवते आए साध सजीव दुख भंजन गुर ज्ञान हों छुटके हुए आनंद ते हो नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हितकर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत किरपाला ओरे कछु न किन्हू किया नानक सब कछ प्रवते हुआ सलोक लिख है कते ना छूटी है खिन खिन फूलन हार बख्सन हार बख्सल है नानक पार उतार पौड़ी लूण हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण तैस ढूंढन जाए देवन हार दातार प्रभ निमख न मने बसाए लालच चूड़ बेकार मोह या संपे मन माहे लंपड़ चोर निंदक मह तिनहु संग बिहाए तुद पावे ता बख्सलहे खोटे संग खरे नानक भावे पार ब्रह्म पहान नीर तरे सलोक खात पीत खेलत हस्त भरमे जन्म अनेक भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुर वचन समाए खेमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर पई अंध सुख बिसराम खेप नमाही बहुत लाभ।

दुख लत्ता, नाम की महिमा, संत दिवस, संत प्रताप, तुरत सवनस, संत का संगवड़ भागी पाईये, संत की सेवा नाम ते आईये, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए श्लोक, बहु सतर बहु सिमरति, पेखे सर्ब टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी, जाप तव ज्ञान सब ध्यान, खड़ सातर सिमर तव ख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खण पृथ्वी फिरे तिर जीव, मां उदास तपी सरतीव, अग्र माए होमद प्राण, तानक असव हैवर भूमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अध साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, हर के नाम तमसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गद पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे, तोज करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, ए देही को बो साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरे, जल धोवे बो दे अनीत, तुद कहा होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे, पातत बहु मूच, बहुत सियाणप जमका भो व्याप, अनक जदन कर तृष्ण ना त्रप, पेख अनेक अगर नहीं बुझे, कोट पाव दर्ग

सह सुभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्मज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्मज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने गए सब ते नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीना। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्मज्ञानी सदा समंदरसी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जोता।

प्रवते हुए प्रम है सुमात ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम परगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सदगी जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस तुग सह सुमावे अपने जन कौ सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जो पावे सोई होग खिन में था व्युथा पनहार अंत नहीं किस पारावार हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ पावे मानो गद पावे प्रभ पावे ता पात्र त्रावे प्रभ पावे बिन सास्ते रख प्रभ पावे ता हर गुण पख प्रभ पावे ता पतत उधार आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप सुवामी खेले बिगसते अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मान गुते क्या हो आवे जो तु पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब कुछ ले जो तु पावे सोई करे अनजानत बिखिया में रच जे जानत अपने आप बच परमे पूला दर्द तावे निवख मै चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिश कशु न आवे तिस तत्काल दज प्रटावे जाको अपनी करे बगसीस ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिंड सत की रास घड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करण करामन सर्व

अरेनुप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी तड़ कर सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर हो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी संत के दुखन यार जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुट्टे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हत्ते को रखे ना कोय संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतर संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जून लावे संतन के दुखन सर्प जून पाए संत के दुखन त्रिगत जून किर माए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को शले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए संदोकी का थाओ को नागे नानक संत पावे ता वे पीगत पागे संत का निंदक मां अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक मां तेयारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दोखी सदा अपवित संत का दोखी

आपे आव सगल मैं आप अनक जुगत रज थाप थाप अवनासी नाही किज खंड धारण तारहो ब्रह्मांड अलख पे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रजाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रके सेवक सगल उदाहरण प्रके सेवक दुख विसारण आपे मेल लय के पा।

संतन कर पाया तज अपमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद खेप संतह संचाल अवर ते आग बिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोय मुख उजल हर दर गए सोय यो वापार विरला वापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इसनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवावड पागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक विघन ते साधु राख है हर गुण गाए अमृत रस चख है ओढ़ गई संते दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार सर्वनदान।

आनंद रूप मंगल सुजाक सर्व थोक सुनहे करताक राज मय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक थित पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाग सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मै जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे।

भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सो रह सुमाए। जो होवा होवत सो जानै, प्रभ अपने कहो पछानै। जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे इनकी ओट लेहे, मन तने अपना तिन जन देहे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। इसकी शरण सर्व सुख पावे।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सा मीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कान सो प्रसमरथ विरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाए ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन दान मै हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दैस ताव ते आवे ठाए ताको बिगन ना लागे कोए जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

संसार शब्द कराए जन नानक घर का दास है हर दासन की घर पैजर खाए पौड़ी तू सच्चा साहेब आप है सच सा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वन जा रे तारे सच सेव है सच वणन जल है गुण कथे निरारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहेब अलख है गुर शब्द लखारे श्लोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तेदा कदे न होवी पला उस दे आखे है कोई न लगे नित ओजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उस दा सब गया नित चुगली करे अणहुंदी प्राई मोह कढ़ न सके उस दा काला पया कर्म धरती शरीर कल युग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए गल्लां उपर तपासना होई विस खादी तत्काल मर जाए भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए जन नानक कौसल सोजी पाई हर दाकियां बातां आख सुनाए महला चौथा होंदे परतक गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थोक थोक मोए पाही जो सदगुर फिटके से सब जगत फिटके निध पंबल पूसे खाही जिन गुर गो प्याय अपना से लेंदे ठा फिराही तिन की भुख कदे ना उतरे निध भुखा भुख कूकाही ओना दा आख्या को ना सुने जो सदगुरु मारे तिन जाए मिले रहंदी खोंदी सा पत गवाही ओए अगे कुश्ती गुरके फिटके जे ओस मिले तु कुश्ते उठाही हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चितलाही उर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही महला चौथा जे हुंदे गुरु बैठ गया ते जन की वड्याई वड्डी होई तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करे जिसके मस्तक हस्त धरया गुर पूरे सो पूरा होई गुर की वड्याई न चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई जन नानक हर करते आप बैठ गया आपे पैज रखे प्रसोई पौड़ी ताया कोट अपार है अंदर खटनाले गुरमुख सौदा जो करे हर वत समाले नाम दान खरवण जीए हीरे पुरवाले विण काया जे होर ते तन खोज दे से मूड बेताले ते उजड़ परम पुआई है ज्यो झाड़ मिर्ग पाले श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सदगुर पूरे की सो औखा जग में होया नरक कोर दुख खू है उथे पकड़ ओट होया ऊग पुकार को ना सुने हो औखा होए होए रोया ओन हलत पलत सब गवाया लामूल सब खोया ओ तेली संदा बलदकार निद पलके उठ प्रवजोया हर वेखे सुने नित सब किश तिद्दू किश गुज्जा ना होया जैसा भी जे सोलुणे जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रवे अपनी तेस सदगुर के चरण तोया गुर सदगुर पिछे तर गया ज्यो लोहा काठ संगोया जन नारक नाम त्याए तू जप हर हर नाम सुख होया महला चौथा वड पागिया सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया घर राय अंतर जोध प्रगासिया नानक नाम सुमाए पौड़ी यो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गुज रतन विच लोकर है कोई गुरमुख सेवक कढे खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रव्या इको ओत पोत एक देखिया एक मन्या इको सुनिया सरम स्रोत जन नानक नाम सराए तू सच सच्चे सेवा तेरी होत
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਰਸ ਤਿਨ ਘੇਰ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजी है, मलह में कड्ढे तोय, सच वणन जय रंग स्यों, सच सौदा होए, टोटा मूल न आवई, लहार पावे सोए, नानक तिन सच वणन जया, जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी, साराई सच सराहना, सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मनवसे, सच सच्चा हरख वाले, सच सच्चा जिनी अराध्या, थे जाय रले सच नाले, सच सच्चा जिनी ना सेवया, थे मन मुख भूड बेताले, ओ आल पताल मोह बोल दे, जो पीते मद मतवाले, वाले,

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुझ जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हवठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सदगुर पेटिया महला पंजवा दामनी चमतकार त्यों वरतारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नावज पंदो तिस्तनी पौड़ी सिमरत सातर सोध सब किने की मना जानी जोजन पेटे साध संग सोहर रंग माणी सच नाम करता पुरख ए रतना काणी मस्तक हो वे लिखया हार सिमर पुराणी तुसा दिचे सच नाम नानक मेहमानी। सरोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी

राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए, जे पावक सुर न रह जारे, राम उदक जन जलत ओबारे, पाव सागर सुसागर माही, पीवरे जल निखुड़त नाही, कह कबीर पज सार्ग पानी, राम उदक मेरी तिखा बुझानी, गौड़ी कबीर जी माधव जल की प्यास न जाए।

आप मोहे मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्मा किए बहुरंगा। ऐसे कार हम बहुत बसाए, जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा शद्रपत कबहू पेघारी। सागत मरे संग

तीनों ताप, तब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहो कबीर सुख सहज समाव, आप न डरो न अवर डराव। गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जो के कर जाता, शब्द अतीत अनाह दराता। जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया। ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ। सो गुर करो जे बौर ना करना, सो पद रवो जे बौर ना रवना। सो त्यान तरो जे बौर ना तरना, ऐसे मरो जे बौर ना मरना। उल्टी गंगा जमन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो। लोचा समसर यो व्योहारा, तत विचार क्या अवर विचारा। आप तेज बाए प्रथमी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। कहे कबीर निरंजन त्याव, तेत कर जाओ जे बौर न आवो। गौड़ी कबीर जी ते पदे कंचन स्यो पाई गए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। अमोय राम अपना कर जानिया, सह सुपाय मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्मे कद कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मद त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जे मरने सब जगत तरासया, तो मरना गुर शब्द प्रगासया। अब कैसे मरो मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया। रहाओ मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई। कहो कबीर मन पया आनंदा, गया परम रहा परमानंदा। गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावो।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ। जे कड़ राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर। जात जुलाह मत का तीर, सहज सहज गुण रमै कबीर। गौड़ी कबीर जी गगन साल चोवे मेरी पाठी, सांच महारस तन पया काठी। होआ को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा। रहाओ सहज कलालन जौ मिल आई, आनद माते अनदन जाई। चीन त चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनपो पाया।

दो पदे नामे जोग ध्यान चित लाया, दिन बैराग न छूट समाया, कैसे जीवन होए हमारा, जब ना होए राम नाम अधारा, रहाओ कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो आन, गौड़ी कबीर जी जे सिर रच रच बांध पाग।

गौड़ी ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुखमो न मांगया पावे बिखिया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुख हमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खुद जो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय देव नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मनलीन पय सुख देओ जियो एक अर सगल शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी अहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम नाम पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जान पर कर जातन सोही सो साहेब रहा पर पूर सदा संग नाही हर

मन बौरारे, माया यो व्यवहार, जैसा रंग सुंभ का मन बौरारे, त्यों पसरियो पासार। नावन को तीर्थ कने मन बौरारे, पूजन को बो देव कहो कबीर, छूट नहीं मन बौरारे, टूटन घर की सेव गौड़ी, अग्न न दहे पवन नहीं मगने, तस्कर नेर न आवे, राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कथी न जावे, हमारा तन माधो गोविंद तरणी तार, ए सार तन कहिए, जो सो प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइए, हरहाओ इस तन कारण से संकादक, खोज पै उदासी, मन मुकंद जेबा नारायण, परे न जम की फासी, निज तन ज्ञान पद गुरदीनी, तास सुमत मन लागा, जलत अम्ब थम मन तावत, परम बंधन पो पागा, कहे कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी, तुम कर लाख कोट असभस्ती, हम कर एक मुरारी, गौड़ी यूं कब के कर मुष्ट चरण की, लुब्धना त्याग दयो, जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर गरे परे हो, भगत बेन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बेन, कही न सच रहो रहाओ, जो उद्यान कुसुम प्रफुल्लत, किने न कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जोन में, फिर कार हयो, या तान जोबन आर शुद्ध दारा, पेखन को जो दयो, तिन ही माहे अर्ग जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो, औध अनल तन तिन को मंदर, चौध ठाट ठयो, कहे कबीर ऐसा कर तरण को, मैं सदगुर ओट लयो, गौड़ी

इस माटी में पवन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आम न जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रगाओ, गर्भ जो में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उसी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर नटायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जी से जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, दरकिन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परम निधान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपै देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपै त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर चित चेतया, आराम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आशा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पद करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारहवीं, आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तुहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारहवीं, बिपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस, कहां पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरे ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटाना रखाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुग लो तंडा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारवी मारे छाडो परम, पलट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे फांडे, डग मग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाईये, लीनो हाथ संधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या बिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा गौड़ी तेरवी, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत भी चार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहिब रोस्तरों के प्यार, नाम तेरा आधार मेरा, जो

चचा रचत चित्र है पारी ता चित्र चेतो चितकारी चित्र बचित्र ए अवचेरा ता चित्र चित राख चितेरा छशा ए शत्रपद पासा छग के ना रहो छाड़ के ना आसा रे मान मैं तो शिन शिन समझावा ताहे छाड़ कद आ बंधावा जज्जा जौतन जीवत जिरावे जोबन जार चुगत सो पावे तस जार पार जार जर जबर है तब जय जोत उजार हो लय जज्जा उर्ज सुज नहीं जाना रहो चलक नाही परवाना कात चग चग और समझावा चगर किए चगर होगी पावा न्यन्या निड जो कट रहे हो दूर कहाँ त जाए जा कारण जग टूडे हो नेरो पायो ताहे टट्टा विगट काट कट माही खोल कपाट मैल के ना जागी देह अटल टल कते न जावा रहे लपट काट पर चोपावा ठट्ठा ए दूर ठग नीरा नीठ नीठ मन की या तीरा जिन ठग ठग गया सगल जखावा सो ठग ठग गया ठौर मन आवा डड्डा डर उपजे डर जाई ता डर मैं डरया सुमाई जो डर डरे ता फिर डर लागे निडर हुआ डर और होए पागे टड्डा टेग टूंडे कतियाना टूंड ही टह गए पुराना चढ़ सुमेर टूंड जवे आवा जे गड़गड़े सो गड़ में पावा नाना ता रूतो नर नेही करे ना निवे ना फुन संचरे तन जन्म ताही को गणे मारे एक ता जाए कणे तत्ता अतार तरे हो न जाई तन तिरपाउन में रहो सुमाई जो तिरपावन तन माए सुमावा तो तत्ते तत् मिलिया सुज पावा थत्ता अथा था नहीं पावा ओ अथा क्यों थिर ना रखावा थोड़े थाल थानक आरंभ बिनगी थंबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सुनहारा जस अदेख तजराक बेचारा दसवें द्वार ऊंची जब दीजे तौ दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्धे उर्द नंबेरा अर्धे उर्दे मंज बसेरा अर्धे शाड़ उर्द जो आवा तो अर्धे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निर दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जब जय पावा तब ले निरखे निरख मिलावा पापा अपर पार नहीं पावा परम ज्योसो पर चोलावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरई पप्पा बिन फूले फल होई ता फल पंक लखे जो कोई दून न परई पंक बिचारे ता फल पंक सबे तन पारे बब्बा बिंदे बिंद मिलावा बिंदे बिंद न बिछर न पावा बंदो होए बंदगी गए बंदक होए बंद सुध लहे पब्बा फेदे पेद मिलावा आपो पान परोसो आवा जो पार सो पीतर जानिया पया पेद पौत पहचानिया मम्मा मूल गया मन माने मरमी हो सो मन को जाने मत कोई मन मिलता बिलमावे मगन पया ते सो सच पावे मम्मा मन स्यों काज है मन सदे सिद्ध होए मन ही मन स्यों कहे कबीरा मनसा मिलिया ना कोए यो मन शक्ति यो मन सीयो यो मन पंच तत् को जियो यो मन ले जो और मन रहे तो तीन लोग की बातें कहे जैया जो जाने तो दुर्मत हान कार बस काया गाओ रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाओ रारा रस निरस कर जानिया ओए निरस थोरस पहचानिया ए रस छाडे ओ रस आवा ओ रस पिया ए रस नहीं पावा लल्ला ऐसे ले मन लावे अंत न जाए परम सज पावे अर जो तहां प्रेम ले लावे तो अले लहे ले चरण सुमावे ववा बार बार विष्णु सुमार ना आवे हार बाल बल जे विष्णु तना जस गावे विष्णु मिले सभी सज पावे वाह वाह वाह ही जानिए वाह जाने यो होए यो आर हो जब मिले तब मिलतना जाने कोए ससा सो निका कर शुद्ध कड़ परचा की बात नरोद कड़ परचे जो उपजे पाओ ऊ रहया ते तिर पन राओ खखा खोज परे जो कोई जो खोजे सो बौर न होई।

भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंभ अहिर अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मय बाय सोमवार सज अमृत चर त्यागत बेग सगल बिखर।

सो को न कह समझाए जाते आवा गम बिलाए रहाओ बोबद धर्म न रूपी है करता दिसे सब लोए कम कर्म ते छूटी है जे साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म बिचारी है संका सुन वेद पुराण संसा साध हृदय बसते कौन घेरे अवमान बार उदक पखारिये कड़ पीतर बेबद बेकार सुध कमन पर होए बो सुझ कुंचर बेद व्यवहार राव प्रगास रजनी जसा गत जांत सब संसार पारस मानो तांबो छोय कनक होत नहीं बार परम परस गुर पेटीए पूर्व लिखत ललाट उन मन मान मन गी मिले छुटकत बज्र कपाट भगत जुगत मत सत करी परम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार अनक जतन निग्रह किए तारी न टरे परम फास प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद राग अस महला पहला कर पहला सोदर सो दर तेरा केह सो कर केह जित बै सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक संख केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परी सो कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनु पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म दुवारे गावन तुदनु चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनु इंदर इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले गावन तुदनु सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनु साध विचारे गावन तुदनु जति सती संतोखी गावन तुदनु वीर करारे गावन तुदनु पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन सुरगुमश पय आले गावन तुदनु रत्न पाए तेरे जेते अठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनु जोध महाबल सूरा गावन तुदनु खानी चारे गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनु गावन जोत पावन रते तेरे पवित्र साले होर केते तुदनु गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती जिनसी माया जिन उपाई कर कर देख कीता अपना ज्योत दी वड्याई ज्योत पावे सोई करसी फेर हुक्म करना जाई उपात साहो सहापत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला चौथा सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम्य पारा सब त्यावे तुझी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी हव तेरे चोज विड़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अबर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेव है तुझ जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावे तुझ जी छे जन जुग में सुखवासी छे मुगत पै जिन हर ताया जियो तेन टूटी जम की भासी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप सुमासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करे हर पूजा जी सब तापे जपे बेअंत तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत सास्त जी
ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤ ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੇ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ

आपे नदर करे जो कुछ करना सो कर अवरण करना जाई जैसा वरते तैसो कही है सब तेरी वड्याई कल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तपताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहिंदियां उठदियां नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाहो ए तरंग नाचो रख रख पाओ सिख सबादी क्या का पाओ गुरमुख सोनना साचा नाओ नानक आखण मेरा वेर ए तरंग नाचो रख रख पैर आसा महला पहला पौण पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंदले दहसर मूंड पिटाया रावण।

आए, नदर कर इतना सदगुर मिले, परमत नानक पहुंचल तर आसा मगला पहला पंच बदे दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उदबुज कामना ही क्या सुल्तान सलाम विहूणा अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसर दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पौन ना वाजे चरणी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर देख बाग पे चोखी सिंचित पाओ करेगी सबना फल लागे नाम एको बिन कर्मा कैसे लेगी जेते जी तेते सब तेरे विण सेवा फल किसे नाही दुख सुख पाना तेरा होवे विण नावे जियो रहे नाही मत विच मरण जीवन होर कैसा जा जीवा ता जूत नाही कहे नानक जीवाले जिया जय पावे है राख तुही आसा महला पहला काया ब्रह्मा मन है तोती ज्ञान जिनेऊ ध्यान पुष्पाती हर नामा जाजा चौनाओ गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ पांडे ऐसा ब्रह्म विचार नामे सोच नामो पढ़ो नामे चज आचार रखाओ बार जनेऊ जिचिर ज्योत है नार।

तू सब ना का सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वगे, खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती, मोया सार न काई। आपे जोड़ छोड़े आपे, वेख तेरी वड्याई, जे को नाओ तराए वड्डा, साध करे मन पाने, खसमे नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किश पाए, नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा, महला तीजा, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, हर दर्शन पावे वडपाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगमे पारा, गुर के दर्शन मुक्त गद होए, साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा।

प्रवास आधार निगुरे कौ गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुख ताको लगे ना पीर जम काल ते नेड़ ना आवे नानक गुरमुख साज सुमावे आसा महला तीजा शब्द मुआ विचू आप गवाए सदगुर सेवे तिल ना तुमाए निरपो दाता सदा मन होए सच्ची बाणी पाए पाग कोए गुण संग्रह विचू अवगुण जागे पूरे गुर के शब्द समागे हरहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने अमृत शब्द नाम खाने साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण अमोलक पाए ना जागे मन निर्मल साचे शब्द समागे सेवड भागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देवे सहे सुपाए नानक कीमत कहन न जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई किरी मशुन्ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द बखाने कोए विण नावे दुख दर्द शरीर सागुर पेटे ता उतरे पीर बिन गुर पेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पी आए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए

सोई जन जाने, हर गुण सदगी आख वखाण, जिन घर सेवया तिन सुख पाया, सहजेगी घर नाम सुमाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा, किसी तड़ाकिया मित्र सुत नाल पाई, किसी तड़ाकिया कुड़म सके नाल जवाई, किसी तड़ाकिया सिकदार चौधरी नाल अपने सुवाई, हमारा तड़ा रहया सुनाई, हम हरसो तड़ाकिया मेरी हर टेक, मैं हर दिन पख तड़ा अवर ना कोई, हौ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिनसो तड़े करे से जागे, चूड़ तड़े कर पछो तागे, फिर ना रह मन खोड़ कुमागे, हम हरसो तड़ा किया इसका कोई समर्थ ना है, ये सब तड़े माया मो पसारी, माया को लूजे गावारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान में जाए, जिसनु कृपा करे तेस सत्संग मिलाए, हमारा हर तड़ा जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बे पावे, पराया शिद्र अटकल है अपना अहंकार बदावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा धर्म।

माया मूठा चेत नाही, परमे पूला बोती राही, बाहर पेख करे कनेरे, अंतर बिखय उतरी केरे, आवर उपदेश आप ना बूझ, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीज।

इन ऊपर ले राख्यो गुमान, एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिसते पाइये हर पुरख सुजान। आसा मोहल्ला पंजवा, एक तुके चौप दे, एक कड़ी दिन समुख को बहुत देहारे। मान ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन से मुख को कभू ना बिगावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मुख को पिरे मिलावे। हरहाओ चार पैर क्यों जुगे समाने, रैन पही तब अंत न जाने। पांच दूत मिल पिरो विछोड़ी, प्रम्पन रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श।

रब रहे आपर सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत अगोचर। यो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करे चतराई। जहाँ सब

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया, हरहाओ किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे बुकारा, निंद की गत तथु नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतन टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिए रोढ़ाई, आसा मोहल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहा काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुस रोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम न स्वई डोरा, हरहाओ माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र कहो तरकन लागा, तत् योग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतर जामी सब के जाने, उसते कांश पाया, कूड़ कपट बांच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान नृत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर री जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, पर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे ले सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लै बरबूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, अज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे, हरहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, चूपी निरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिगसाना रे, आसा महला पंजवा, बंधन काट बसारे औगुण, अपना बिरद समारिया, होए किरपाल माध पित न्याई, बारग ज्यो प्रद पारिया, गुरसिख राखे गुर गोपाल, काढ़ लिये महापवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जमते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साध गराज जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साध संग दुख नाठे, छिजे न जाए ही पौ ना व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंतकाल प्र पय सहाई, एत उतरा कनहारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा, जा तू साहेब ता पौ केहा, हों तू बिन के साल आही, एक तू ता सब किश है,

योग बनया तेरा कीर्तन गाई, सर्व सुखा बने तेरे ओले, परम के परदे सतगुर खोले, रहाओ हुक्म बूझ रंग रस माने, सतगुर सेवा महान निर्वाणे, जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवान, नाम रत्ता सोई निर्वाण, जाको मिलो नाम निधाना, पंत नानक ताका पूर्ख जाना, आसा महला पंजवा, तीर्थ जाओ ता हो हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो अस्थान बतावो मीता, जाके हर घर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक सुर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभु कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संघर कीर्तन गाई है, ये स्थान गुरु ते पाई है, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बार फन सूखा, हर सिमरत सगल बिना से दुखा, सगल सुख जा तू चित आवे, सो नाम जपे जो जन भावे, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तहे दुख डेरा, हुक्म बूझे सोई परवा।

तय ते जाई। जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई। तुमरी कृपा ते तृप्त अघाई, रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई। तौ प्रसाद प्रसुगी वलाई, मन तन अंतर तुझे ते आई। तुमरे लवे न को उलाई, कहो नानक नित एवे ते आई। गत होवे संते लग पाई, आसा महला पंजवा। उठत बैठत सोभ त्याईये, मार्ग चलत हरे हर गाइये। श्रवण सुनी जे अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा। दुख रोग मन सगले लथा, रहाओ कार्ज काम बाड काड पीजे। गुर प्रसाद हर अमृत पीजे, दिन सरैन हर कीर्तन गाइये। सो जान जम की वाट न पाइये, आठ पैर जिस विसरै नाही। गत होवे नानक तिस लग पाई, आसा महला पंजवा। जाके सिमरन सुख निवास, पई कल्याण दुख होवत नास। अंद करो प्रभु के गुण गाव, तदगुर अपना साध सदा मनाव। रहाओ तदगुर का सच शब्द कमाव, फिर कर बैठे प्रभु अपना पाव। पर का बुरा न रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई नीत। हर घर तंत मंत गुर दीना, यो सुख नारग अन दिन चीना। आसा महला पंजवा, जिस नीच को कोई न जाने। नाम जपत हो चौं कुंट मान।

काउ न आवत काम, संत प्रसाद ताको जप ये नाम, साध संग मन सोवत जागे, तप्रव नानक मीठे लागे, आसा महला पंजवा, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध के संगे, हर हर नाम त्यावो रे हरहाओ, सगल समगरी जाके सूद परोई, कड़कड़ अंतर रव्या सोई, ओबत परलो खिन में करता, आप लेप निर्गुण रहता, करन करामन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी, आसा महला पंजवा, कोड़ जन्म के रे पवारे,

और पूरे के चरण गए और जन्म के पाप लहे रतन जन्म तो सबल पया कहो नानक प्रभु करी माया आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे गुर के चरण के संग चारे जाग रे मन जागन हारे बिन अवर न आवस कामा झूठा मोह मिथ्या पसारे रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए गुर किरपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा ना ही ताओ गुरदाता गुरदेव नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख अपने खेती आपे राख जद कद पेखो एक ओगी कड़कड़ अंतर आपे सोई रहाओ आपे सूर किरण विस्तार तोई गुप्त सोई आकार सरगुण निर्गुण थापे नाओ तो मिल एक की नो ठाओ कहो नानक और ब्रह्म पखोया अंध रूप सब नयन अलोया आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना दिन रहन तेरा नाम खाना मैं निर्गुण गुण ना ही कोय तरन कामन हार प्रसोय रहाव मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी नाम तेरे की आस मन तारी जब तब संजम तर्म न साधा ना प्रभु का मने अराधा किशु ना जाना मत मेरी तोरी बिनवत नानक ओड प्रातोरी आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला जबत जबत पै दीन दयाला करो बेनती सदगुरे अपनी कर किरपा रखो सरनाई मुको देव हरे हर जपनी हरहाओ हर माला और अंतर तारे जन्म मरण का दुख निवारे हृदय संभाले मुख हर हर बोले सो जान ए तुत कते न डोले कहो नानक जोरा चै नाय हर माला ताके संग जाए आसा महला पंजवा। जिसका सब किसका होए हे जन लेपना व्यापे कोए हर का सेवक सदगी मुक्ता जो उस करे सोई फल जन के आत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्यागर सरणी आया हे जन काम व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे जिसको चिंता सुपने नाहे कहो नानक गुरपूरा पाया परम मोह सगल बिनसाया आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा ता दुख परम कौ कैसे नेरा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी मोए निर्गुण कौ लिहो उधारी रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता फल पाया जब सदगुरमंता सोई सत सत गए सोए सेमर सेमर रख कंठ परोए कहो नानक कौन ओ कर्मा जाके मन मसिया घर नामा आसा महला पंजवा। काम क्रोध अहंकार विभूते हर सिमन कर हर जन छूटे सोए रहे माया मदमाते जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परमो जोन पवाया अस्तर भगत हर चरण ते आया बंधन अंध कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहो नानक तो प्रसरणाई ईहा सुख आगे गद पाई आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट हय रेजा का अपग सब संघ है सदा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो शरणा आचड़े उखर साल कर।

पारब्रह्म के संगी साध चित्तर गुप्त सब लिखते लेखा भक्त जिना को दृष्ट न पेखा कहो नानक जिस सदगुर पूरा वाजे ताके अनगद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा एक साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझगी तिशना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने तरन करामन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेर परे पंडार तोट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय निर्ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सेमर सेमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मने आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखया भाग कहो नानक ताका फिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या फिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सुहाग सीगार करी मन मेरे की तप्त हरी पलो पयो प्रे कहे आ मानिया सूग सहज इस कर का जानिया रहाओ हो बंदी प्रे खिजमतदार ओ अवनासी अगमे पार ले पख प्रे चिल्लो पाए भाग गए पांच दूत लावे ना मैं कोल ना शोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत होए अनाथ गरीब निमानी कंत पकर हम की नीरानी जम प्रीतम सजन लागा सुग सहज मेरा तन सुहागा कहो नानक।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्ण महादेव मोया, गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बाधा, हमे पचे मनमुख मुँह राखा, गुरु नानक बाँ पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा, सर्व दुख जब विसरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी, संत रविता से हर घर त्याय, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख पर तुमरी रिजाए। रहाओ संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन किसी दिया ते चित नाहे, मां बिखिया में दिन रहन जाहे। कौ नानक प्रसिमरो एक, गद पाईगे गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा, नाम जबत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया, सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर, गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वस गद आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक इस ऊपर कुर्बान।

सर्व सुख पावै, आवर काहू पै बौड़ ना जावै, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रमनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली भांत सब सह समाही, जाकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

पर करे बहुमान बुलाया बोले गुर के पान गुजी शनी नाही बात गुरु नानक तुठा की नी दात आसा महला पंजवा गुरपुरे राख्या दे हाथ प्रगट पया जन का प्रताप गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई जी की अरदास गुरु पे पाई रहाओ शरण परे साचे गुरुदेव पूर्ण हो।

वंजन वहंदे बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना मां विघम संसार विरले पेखिया छूटन हर की सरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोई ना किसी संग काहे गर्बी है एक नाम आधार पौजल तरबी है।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरमल हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुण मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विश्वास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान घो प्रभ पावो संतरेन उतारी श्रवणी कथा नैन दर्श ते

मो कुटुंब दिखे रसमते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नहे नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ ना पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसाहे ये मुक्ता ये जूता रखो संत संगाहे।

आया सेव कमाया गौन रस रस गावे एक है अस दर्स ते अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आये सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख बेदाता नानक कड़ कड़ आही आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुगिया हुआ राज कहावे हों कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर केटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवां कर चौदवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम सिउ लाग रहे रहाव जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवां मिल राम प्यारे तुम बिन तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण प्रभु

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लभ लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सज साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अन दिन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथे सदा सुख आगे मन चंचल बिद नाही जाने मनमुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास।

नरात नाम अमोल है, तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया, आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई, हरहाओ आमन जामन तव रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये, आद पुरख अपरंपरा।

पड़ी दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे पराणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जे ती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुक्म ना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना है दे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई विण गुर पूरे कोए न जानी माया होए दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तपसार हर जीव मन वसे

ती बाणी महल प्राप्त होए, गो सेवा ते सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उर तारे, साची शोभा साग दुआरे, सेवड़ भागी जे गुरसेवा लाए, आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उधरे कुल सबाए।

हाथ सहित सुखे सब हाट सा व्यापारी एक थाट जे जिया डन को लय न जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चलावो लै लाह गुरम कर आव सदगुर साहो सिख बन जारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

जीवन दर्द दिखाए, जो जी तोते बिछरे प्यारे, जन्म मरे बिखाए, जिस तू मिले सो मिले प्यारे, तिसके लागो पाए, जो सुख दर्शन

सो करी प्यारे आवर किश करण न जाए, दिन रैन सब सुहावने प्यारे जे चपिए हर नाओ, साई कार कमावनी प्यारे पुर मस्तक लेख लिखाए, एको आप वर्तदा प्यारे घट घट रहा समाए, संसार कूब ते उधर ले प्यारे नानक हर सरनाए, राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ससे सोए सिटिजन साजी सबना साहेब एक पया, सेव तरे चित जिनका लागा आया तिनका सबल पया, मन का गे पूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तौ पड़िया रहाओ, ईवड़ी आद पुरख ए दाता आपे सच्चा सोई, इना अखरा में जो गुरमुख बूझे तेस सिर लेख न होई, ऊड़े उमा ताकी कीजे जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे जिन्नी सच कमाया, गंगे ज्ञान बूझे जे कोई

आए, माया के संगल बंद लया, खखे खुंद कार सा आलम, कार खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बांधया, अवरी का नहीं हुकुम पया, गगे गोए गाय जन छोड़ी, गली गोबिंद गर्व पया, ताड़ पांडे जन आवी साजी, चाड़ नवागे तई किया, कगे काल सेक जे ताले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा पला जे सम कर जाने, इन बिद साहेब रमत रहे, चचे चार वेद जन साजे, चारे खानी चार जुगा, जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया, छे छे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम हुआ, परम उपाय भुलाई गए आपे, तेरा कर्म हुआ, तिन गुरु मिलया, जजे जान मंगत जन जाचे, लग चौरासी तीह पवया, एको लेवे एको देवे, अवर ना दूजा मैं सुनया, झजे चूर मरो क्या प्राणी, जो कुछ देना सो दे रहा, दे दे वेखे हुकम चिलाए, ज्यो जिया घर जक पया, न्यन्ये नदर करे जा देख, दूजा कोई नाही, एको रवर या सब थाई, एक वसया मन माही, तट टंच करो क्या प्राणी, तड़ी के मौत के उड़ चलना, जुए जमन हारो अपना, पाज पड़ो तुम घर सरना, ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा से ही जा निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डडे डंप करो क्या प्राणी, जो किश हुआ सो सब चलना, किसे सिरे वो तासु पाव, सर्ब निरंतर रब रहे या, टड्डे टाए उसारे आपे, यूं तुझ पावे तिवे करे, कर कर वेखे उगम चलाए, तिस निस्तारे

जाए स्वामी तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना नरक न परना, जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लयन से सोह है तिन सुख पल होवे, मन सेजन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला शांत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया की वाड़िए राम, बिखबल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम, फिर होए ताता खरा माता ना बिन परतापे, ओ जेव सायर दे लहरी बिजली जिवे चमके, हर बाज राखा कोए नाही सोए तुझे बिसारिया, सद कहे नानक चेतरे मन मरे हरना कालिया, पावरा फूल पहंतिया दुख अदपारी राम, मैं गुर पूछा अपना साचा बिचारी राम, बिचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो, सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो, जाऊ मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेता लिया, सच कहे नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया, मेरे जीड़िया परदेसिया इत पवे जंजा ले राम, साचा साय मन मसे की फासे जम जा ले राम, मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्धक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया, परत कार चित लाए हरस्यों छोड़ मनो अंदेसिया, सद कहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया, नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे को जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाणे सदगुरु जिन चेतया, बिन नाम हर के परम पूले पचे मुद अचेतया, हर ना भगत नारे साचा से अंत ताही रुन्या, सद कहे नानक शब्द साचे मेल चिरीम शून्या, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा शंत कर पहला, हम करे साचा सोहला साचे शब्द सुहाया राम, तान तिर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया, कामन सहजे माती गुर शब्द।

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलयो जन्म सवाया, दूजड़े कामण परम पुली, हर वरना पाए राम, कामण गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम, बिरथा जन्म गवाए, मानमुख एयाणी, अवगुणवंती चूरे, अपना सदगुर सेव सदा सुख पाया, तां तिर मिलिया हदूरे, देख तिर विगसी अंदरों सरसी।

जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे। जिना नानक गुरम खिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ सियाने राम राजे। जे बारों पुल चुक बोल दे पी खरे हर पाने, हर संतानू होर थाओ नाही हर मान निमाने। जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिखी सो थान पालिया लय तूर मुख लावा, गुर सिखां की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा। जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा, गुर सिखां मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे। तर सेवे पूरा सतगुरु पुख जाए लहे मेरी, गुर सिखां की पुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट न आवे हर पुन केरी, गुर सिखां मन वाधाइयां जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखां मन मिटा, हर दरगे गुर सिख पैनाई है जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा। जन नानक हर घर होया हर घर मन उठा, आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे। तिसकी तिसना पुख सब उतर है जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे। जन नानक कौ हर कृपा कर निध जपे हर नाम तरावे। जिन्नी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे। जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई। जिना नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे। तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा, जिन हर से ती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा। जन नानक नाम ते आया हर रखण हारा, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे

महामय प्रभ करमय सुमरत अगत अपार निर्मल। सुनो स्वामी बिनु एहो हर जोड़ नानक दान मांगे।

बनता बिनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे किसे जोबन बधे जरुआ दिन हारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी सरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे भोग सोना परमत पार अगन ते आयो बो परदेस तायो आपोड तारी प्रमुरारी सर्व सुखर नायो रखन हारे प्रप्यारे मुझ ते कछु न होआ हो ना सुख सहज आनंद नानक किरपा तेरी तरे पौन नाम तारीख उधारे भगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधान ना पावगे हर रंग रते प्रभिधाते राम के गुण गावगे बजद कागज बनराज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत ना जाए पाया गई नानक चरण शरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरप पए प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंध पजाणिया गए कंठ लाया गुर मिलाया जस बेमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए राम नाम और हार बेके दिवस गए गत परम मोह विकार बिनसे जोन आमन सब रहे अग्न सागर पए शीतल साद अंचल गहे रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते जय देखो ते संग एको रब रहे घड़कड़ वासी आप विरले किने लया जल थल मैयल पूर पूरन कीड़खत सुमानिया आद अंते मसोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नान करा रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कालमल पाप टरे दुख पुग दर दर नाठ प्रगट मग दिखाया मिल सा संगे नाम रंगे मन लोहड़ी द पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल समूह सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन

तव महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा ते हर चंदौरड़ी अस्थिर किश नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभालिए हर एक बिन कछ अवर नाही भाव दुतिया जालिए मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड़ पाग पाईए सुख सहज समाही आसा महला पंजवा शांत कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कमला प्रपीत कमला प्रपीत है तीखण मद विपरीत है अवद अकार जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे ग्रे मूस्त मन चोर हे दिन करो अनदिन खात दिन खात जात बिहाद प्रभिन मिलो प्रभ करना पते जन्म मरण अनेक बीते त्रे संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूब ज्ञान हीनी तुझ बिना मुहि कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रे नाथ नरहर करो गात मीना जलहीन मीना जलहीन हे ओ बिशरत मन तन खीन हे तत जीवन प्रे बिन होत सानमुख साहिबान

प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास चातरक चित प्यास हे कान बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिनसत ताप तापा बिनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत कहना सुंदर चतर सुजान स्वामी।

आप चितव चितनाथ, चितव चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया, हर कंठ लागे दिस भागे, मिलनहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए हान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

रसवा हो, कालजुग रास अगन का कूड़ अगे रसवा हो। महला पहला साम कैसे तंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे सब को सच समावे। रेग कह रहया पर पूर, राम नाम देवा मैं सूर, नाए लय प्राशित जाहे, नानक तो मोखंतर पाहे। जुज मैं जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया, पार जाद गोपी ले आया, बिंद्रा बन मैं रंग किया, कल मैं वेद अथर्वण हुआ।

अतशुरी जगत का साई। नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर कसे न जाना। देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार। मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे। तान फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली परेन। कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी। चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेड़ चलाएंदा। आपे देव डे आईया, आपे ही कर्म कराएंदा। वड्डो वड्डा

जियो गुर चरण लाघम बिनवता पूछत कहे जियो पाया कावन काज जग उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभो जित

तपि सन्यासी बहु तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा तार अंत तऊ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फेरे चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेरी सब लीना, श्रवण विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपुन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ। सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछान्या।

की आस करे जम निहारे सासा। बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा। तन रैनी मन पुनरप कर हो

करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हो नहा प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बाध्या, मैं राम रमत सुख पाया।

गुप्ता हीरा प्रगट पयो, जब गुर गमदिया दिखाई, आसा पहली क्रूप कुजाद कुलखनी, सौरे पेये बुरी, आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी, पली सरी मोई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी, रहाओ कौ कबीर जब लौरी आई, बड़ी का सुहाग टरयो, लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरयो, आसा मेरी बौरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ, इन मुंडियन मेरा कर तुंदरावा, बिटवे राम रमो।

संत की संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजे, दीजे देवा देव रखाओ, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगनी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लखावो असंत पापी सन, रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही, आसा तुम चंदन हम इरंड बापुर, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊज पए है, गंध सुगंध निवासा, माधव सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी रहाओ, तुम मखतूल सुपेद सुपील, हम परे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधव,

को पुत्र कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ो फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है, मान बज क्रम रस कसे लोभाना, बिनस गया जाए कहूं समाना, कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई, आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ दराता, मन बिसरे प्रभ हीरे अरहाओ, बिख बल मीट लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे बिग पर संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पये, जोत समाए समानी जाके असली प्र पहचानिया, तन्ने तन पाया तरणी तार, मिल जन संत सुमानिया, महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग।

तेरे हर पर्व की हर कथा सुनावे। रहाओ धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर स्यों चित लावे। अमृत बचन सगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपे लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से पाहीन मोए मर जावे। आंत मूल जग जीवन दाता, सब जन को अंध

मन को ए उपदेश दृढ़ावे, सहज सहज गुण गाई, साजन ऐसो संत सहाई, जे भेटे टूटे माया बंद, बिसर ना कबहू जाई, रहाओ करत करत अनक बो पाती, नीकी ए ठहराई, मेर साधु हर्ष।

गुणित नाम ना गायो रहाओ, कौडी कौडी जोरत कपटे अनक युद कर तायो। बिसरत प्रभ केते दुख गनिये मामोनी कायो, करो अनुग्रह स्वामी मेरे गनो नाम होए कुमायो। गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो, गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत, छोड़ आन व्यवहार मिथिया पसदा भगवंत रखाओ। नाम एक अदा

अटल पदवी नाम सिमरन, दृढ़ नानक हर हर सरन। गुजरी महला पंजवा, अहं बुद्ध बहु सघन माया, महा दीर्घ रोग। हर नाम औखद गुर नाम।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमन श्रमण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रगास पए सत्संगे दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्र स्वामी ओत पोत प्रव साथ। शरण प्रयो नानकता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किस रहे ना दिसै,

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरत पल मुहूर्त प्रत्यान सहज समाध दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाचिगे रज साध मोह मिथन दुरंत यस बसना बेकार रख धर्म परम बिदार मंते उदर हर निरंकार तनाड़ आड़ भंडार हर निध होत जिन्हा ना चीर खल मुगद मूड़ पटाख।

करे सही जन सोने तिनको परजा पूजने आई। वाह वाह कर्म प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई। पौड़ी बजक पाठ काया गढ़ पीतर कूड़क सत अभवानी। परम फूले नदर ना आवनी मानमुख अंध अज्ञानी। उपाय किते ना लभनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलाइन हर नाम जपानी। हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा वाह वाह करते हैं रैन सुख विहाए। वाह वाह करते हैं सदा आनंद होवे मेरी।

तारेन, साकत निंदक दुष्ट खिनमय बिदारेन, तेस साहिब की टेक नानक मने मागे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जागे पौड़ी, अकुल निरंजन पुरख अगम अपारिये, सचो सच्चा सच सच निहारिये, पूर्ण जपे किश तेरी तारिये, सबसे दे दातार जेत उपारिये, एकत सूद परोय जोत संजारिये, हुक्मे भवजल मंज हुक्मे तारिये, तब जियो तुद त्याए सोए जि भाग मथारिये, तेरी गत मित लखी ना जाए हों तुद बलिहारिये। श्लोक महला पंजवा, जा तू तुस्से मेहरवान अचिंत वसे मन मागे, जा तू तुस्से मेहरवान नौनिध करमे पागे, जा तू तुस्से मेहरवान ता गुरका मंत्र कमागे, जा तू तुस्से मेहरवान ता नानक सच समागे। महला पंजवा, इत्ती बहन बहन मुच वजायन वज, नानक सच्चे नाम वेण किसे न रहिया लज पौड़ी, तुद ध्यान बेद कतेबा सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े, ब्रह्मे तुद ध्यान इंद्र इंद्रासना, शंकर बिशन अवतार हर जस मुख पणा, पीर पे कंबर शेख मसायक औलिये, ओत पोत निरंकार घट घट मौलिये, कूढ़ों करे विनाश धर्मे तगिये, जित जित लाए आप तित तित लगिए। श्लोक महला पंजवा, चंगियाई आलक करे बुरियाई होए सेर, नानक अजकल आवसी गाफल भागी पेर। महला पंजवा, कितिया कुटंग गुजा थिए नागित, नानक तैस टकया मन में सच्चा मित पौड़ी, हो मांगो तुझे।

मन की कटिए मैल, सत्संग उठिया जन मरण पौ कटिए, जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप, इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया, ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया, रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है, जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा, बार विडानड़े हुमस तुमस कूका पईया राही, तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा, सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ, तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ पौड़ी। सावेला परवान जित सतगुर फेटिया, होआ साधु संग फिर दुख न तेटिया, पाया नेचल थान फिर गर्भ न लेटिया, नदरी आया एक सगल ब्रह मेटिया, तत ज्ञान लाए ध्यान दृट समेटिया, सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया, हुक्मे बुझ निहाल सुख सो खेटिया, परख खजाने पाए से बौड़ ना खोटिया। श्लोक महला पंजवा, विशो हुए जंबूर खवे न वंजन गाखड़े, जे सो तनी मिलन नानक सुख समूह सच। महला पंजवा, जिमी विसंदी पानी है ईदन रखे पाहे, नानक सो आहे जाके अडल हब को पौड़ी, तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे, सोई वरते जग जे किया तुद तुरे, बिस्म पै बिस्माद दे कुदरत तेरिया, सरन परे तेरी दास कार गत होए मेरिया, तेरे हथ निधान पावे तिस देह, जिसनु होए दयाल हर नाम से लेहे, अगम अगोचर बेअंत

बारक कैसे जीवे रग राई, तन ना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ, जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, ओशी मत मेरी जात जुलाह। हर का नाम लयो मैं लाह, कहत कबीर।

होए जिसके तिस गुर नाल सुनेहा, जन कहे नानक मिल साध संगत, हर घर नाम पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटिया अंधेरा दुख नाठा अम्यो हर अस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवै मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइये। नानक पैम पै संत सरणी

जिन हर घर संजोग मिलाया बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अन दिन नाम खाना राम अमृत बाणी उच्चरा हर जस।

मंगै हर भगत पाईए प्रभत आईए जाए मिल गए हर जना। मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन इहो मना बड़ पुरख पूरन गुण संपूरन प्रम पीत हर हर मिल फगै। बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे।

बिनवंत नांग सदा निर्मल सच शब्द रोण चुनकारु सुन वडभागिया हर अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिस हृदय सुमाणी राम अकथ कहानी तिनी।

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किस कहन न जाई राम जिस ते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल मईल एक रव्या नै दूजा दृष्टाया बण त्रैण तिरपवन पूर पूरन कीमत कहन न जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरे प्रभ प्राण अधारे राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर दया।

चात्रक हर बूंद मांगे, जब जीवा हर घर चरना, अमे सरोवरो पियो, हर घर नाम आराम, संत संग मिले

या राम सुख सहज आनंद विरोध सदगी गुण गोपाल नित गाई है। पज साध संगे मिले रंगे बौड़ जोन ना ताई है। गए कंठ लाए सह सुखाए।

कोड अपराध परे ई तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण ते रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै

वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतर ना संग शोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन सा संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे,

बंधन तोड़े सच वस, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किश देखै तिसे का जिनकिया तन साज। नानक सरण करतार की, करता राखे लाज पौड़ी, जदों आपे थाड़ किया बै करते, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै, क्या को देवै, जां अवर ना दूजा किया, फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोतिया। श्लोक महला तीजा, गुरमुख प्रसे

से आपे सुगड़ स्वरूप से आनी अपना चोज कर वेखे आपे आपे सबना जिया काहे जानी। श्लोक महला तीजा एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रम मेरा चित आवे हरसो प्रीत उपजे माया मोह जलावे गुर प्रसादी दुबदा मरे मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिके मर जम्मे हुए खुवार। महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास न जाए नानक सब गुर मिले है, मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकुर दास पया आपे दस अठ वर्ण उपायन आ ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बगसे करे दया आपे पुल न पुल्ले कभी सब सच तपापस सच थया आपे जिना बुझाए गुरमुख इन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा हर नाम न सिमरे साध संग तैतन उड़े खेहे जिन कीती तिसे ना जानई नानक फिट अलूनी दे। महला पंजवा खड़ बसे चरणार बिंद रसना जपे गोपाल नानक सुप्रासिम।

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुल आ जाए। कीमत कने न पाई इते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन गिद वसया मन आए। नानक आप अमेओ है, गुर कृपा ते रहया सुमाए। आपे मिलया मिल रहे, आपे मिलया आए। महला तीजा, ए मन यो तन नाम है। जित सदा सदा सुख होए, टोटा मूल न आवई। लाहा सदगी होए, खाद खर्चे तोट न आवई। सदा सदा ओ दे, सहसा मूल न होवई। हांत कदे न होए, नानक गुरमुख पाई है। जा को नदर करे पौड़ी, आपे सब कट अंदर, आपे ही बाहर। आपे गुप्त वर्तदा, आपे ही जहर। जो शक्ति गोबार कर, वर्त्या सुनहर। ओथे वेद पुराण ना सास्ता, आपे हार नर हर। बैठा ताड़ी लाए, आप सब दूगी बाहर। अपनी मित आप जान।

तू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, वे जा आ डुबे तुम कहां तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है, तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो योगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते योगी की नगरी सब को वस, पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सुखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

मन की मैल न उतर होमे मैल न जाए, इस मन को होर संजम को नाही, बिन सदगुर की शरणाए। सदगुर मिले उल्टी पई, कहना किशु न जाए, पंत नानक सदगुर को मिल दो मरे, गुर कह सब फिर जीव कोए। ममता की मल उतर यो मन अच्छा होए, वढ़ांस महला तीजा, नदरी सदगुर सेवी है, नदरी सेवा होए, नदरी ओ मन वस आवे, नदरी मन निर्मल होए, मेरे मन चेत सच्चा सोए, एको चेते सा सु पावे, फिर दुख ना मूले होए। अरहाओ नदरी मर के जीवी है, नदरी शब्द वसे मन आए, नदरी हुक्म बुझिए, हुक्मे रहे सुमाए, जिन जेवा हरस ना चखेओ, सा जेवा जल जाओ। आनस सद नानक सदगुर मिले फल पाया, नाम वडाई दे वढ़ांस महला तीजा, माया मोह गुबार है, गुर बिन ज्ञान न होई, शब्द लगे तन बुझया, तूजे परज बगोई, मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवे ता पावे मोह द्वार। अरहाओ गुणा का निदान एक है, आपे देता को पाए, बिन नावेसा विछड़ी गुर के शब्द मिलाए, मेरी मेरी कर दे कट गए, तिन हथ केहो न आया। सदगुर मिले सच मिले, सच नाम सुमाया, आस्था मनसा यो शरीर है, अंतर ज्योत जगाए, नानक मनमुख बंद है, गुरमुख मुक्त कराए। वढ़ांस महला तीजा, सुहागणी सदा मुख उजला, गुर के सहज सुपाए, सदा फिर रावे अपना, विचों आप गवाए, मेरे मान तू हर हर नाम ते आए, सदगुर मुख को हर दिया बुझाए। अरहाओ दुहागणी खरिया बिल लांदिया, बिना मैल ना पाए, दूजे पाए कुरूपी, दुख पावे आगे जाए, गुणवंती नित गुण रवे, हृदय नाम साए, अवगुणवंती कामणी, दुख लागे बिल लाए, सबना का पतार एक है स्वामी, कहना किशु न जाए, ना के आपे वेग कीतियन, नामे लये न लाए। वढ़ांस महला तीजा, अमृत नाम सद मीठा लग, गुर शब्दी साध आया, सच्ची बाणी सह सुमाणी, हर जीव मन वसाया, हार कर कृपा सदगुरु मिलाया, पूरे सदगुरु हर नाम ते आया। अरहाओ ब्रह्मे वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, मां जो ज्ञानी वरते कर अपने, तामस बहुत अंकारा, किसन सदा अवतारी रुद्ध, इत लग तरे संसारा, गुरमुख ज्ञान ते जुग अंतर, चूके मोह गुबारा, सदगुर सेवा ते निस्तारा, गुरमुख तरे संसारा, साचे नायर ते बैरागी, पाइन मुख द्वारा, एको सच वरते सब अंतर, सबना करे प्रतपाला, नानक इस बिन मैं अवर न जाना, सबना दीवान दयाला। वढ़ांस महला तीजा, गुरमुख सत संजम,

नित पखा फेरी सेव कमावा, इस आगे पानी टोवा। नित नित सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिर हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला।

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वढ़हंस महल

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रा मेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख पीसर तब की साध।

पूरे मन निर्मल कोई संता तूरे चरण कमल हिरदे उर तारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा।

प्रीतम भाई मैं मिलियो मित्र सुखदाता, ओ जी की मेरी सा बेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हाँ एक खेन तिस बिन रह ना सका।

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप यो पाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नहीं पाए झगड़ा स्वाम सेती आप मनावना, जिस नाल संगत कर

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सदगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार भला।

गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप शाने गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर वा पार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड़पा गो राम। गुरमती मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो साचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उबजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम। गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुनाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसे ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बार वस्त ना पाल, जो पावे सो पूंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिरनावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कह एक सच लगे वापारा, सतगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा, नामे नौन दपाई। मन कुमाया मोह वे आपे दू संतापे, दूजे पद गवाई होमे मार सच शब्द सुमाने सच रते अदकाई। नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई, मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन्म वड़पागी राम। जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम, से जन बैरागी सच लिवलागी अपना आप पछाणिया। मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया, एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी। मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वड़पागे। वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम। ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए। ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजिए जा सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार आराम, कूड़ बोल बिखावणी बहु वधे विकारा राम। बहु वधे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा। खोटे खरे सा

करो सुख दाते देव सतगुर चरण गम तूरा, कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम, हर दानो हर दान देवे हर पुरख निरंजन सोई राम। हर घर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा, सेवक पाए मिले वड़ पागी जिन गुरचरणी मन लागा। कहो नानक हर आप मिलाए मिल सदगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वढ़ांस महला चौथा, हाँ गुरबिन खरी निमाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल सुमाणी राम, सदगुर मेल घर नाम सुमाणी जप हर घर नाम त्याया। जिस कारण हों ढूंढ ढूंढेंदी सो सज्जन हर कर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी। हों गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सदगुर जिन सदगुर पाया,

सदगुरु ज्ञान खड़ग हद तीना यम कंकर मार बिदारे हर प्रा कृपा धारी सुखदाते दुख लाते पाव संतापा सुन गुरमुख नाम सा बिनसे होमे पापा जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया आरोगत पए शरीरा अन दिन सह समाध कर लागी हर जपया गैर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख पंजन सर्व सुख दाता हम पात्र तरे तराया सदगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम वढांस महला चौथा कोड़िया एक ओंकार सदगुर प्रसाद दे तेजन जी राम पाइया राम तन मानस जन्म पुन पाइया राम मान जनवर पुनने पाया देसो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया ए देसो बाकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वड़ भागी पाई।